मेरा रचना है रिके रे रे। Arashajolo kemuruko pananditebo muloye, riri modimo reboka wena.